0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल तिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मल का नेदो सरदा रास्त बाट प्राक्टिस अंते अंते अंते रही।